FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 सवेरे के 8:56 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

शुभ विचार में आज प्रस्तुत है महात्मा गांधी के विचार। वे कहते हैं, लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हों, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं।

एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस योजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी छह राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोतरा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में

0: नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, सलूम्बर, खैरतल, तिजारा, डी, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
1: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
2: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
1: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली।

0: है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे की 9:12 होने को है। अब से लेकर सवेरे के 10 बजे तक लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहलें यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
5: और यही कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम खत्म होता है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: कि क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: राम प्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनिंदा हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी।

0: बन गया हूँ, ये तो एक सवाल है, देखो तो सही तमाशा क्या क्या होता है।
1: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है,
0: जुड़े रहे। एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे की 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योग वाणी।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ योग वाणी।

0: हम सभी जानते हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र के जनक हैं और इन्होंने ही योग विद्या को व्यवस्थित रूप दिया। महर्षि पतंजलि ने ही योग के 8 अंग बताए और अष्टांग योग या राजयोग कहा। सबसे पहले जानते हैं अष्टांग योग के पहले 4 अंगों के बारे में हमारी आज की योग शिक्षिका आशा जी कंवर से।
1: पहला है यम। इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संचय से बचना एवं ब्रह्मचर्य आते हैं। इनके पालन से व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर व्यक्ति का जीवन व समाज दोनों उन्नत होते हैं। दूसरा है नियम। मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करते हुए नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच यानी तन और मन की शुद्धि करना, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, और ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का समावेश है। तीसरा अंग है आसन। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन बताया है। उन्होंने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। वास्तव में आसन हठ योग का मुख्य विषय है। फिर आता है प्राणायाम। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी सूक्ष्म जीवनी शक्ति जो हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। आयाम का अर्थ है दिशा देना। प्राणों को उचित दिशा देकर अपने ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाना प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है।
0: अभी हमने जाना अष्टांग योग के पहले 4 अंगों के बारे में, जो नैतिकता, आत्मशुद्धिकरण और अध्ययन, मुद्रा तथा श्वास नियंत्रण से जुड़े थे। अब जानते हैं अष्टांग योग के शेष 4 अंगों के बारे में।
1: प्रत्याहार। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियां मनुष्य को बाह्य जगत में ले जाती हैं। प्रत्याहार के इस अभ्यास से साधक योग के लिए परम आवश्यक अंतर्मुखता की स्थिति को प्राप्त करता है। धारणा। चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा है। वैसे तो शरीर में मन को स्थिर करने के मुख्य स्थान मस्तक, भ्रूमध्य, नाक का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं, परंतु सर्वोत्तम स्थान हृदय को माना जाता है। हृदय प्रदेश का अर्थ शरीर के हृदय नामक अंग के स्थान से न होकर छाती के बीचों बीच जो हिस्सा होता है उससे है। 7वां अंग है ध्यान। अक्सर ध्यान का अर्थ हम केंद्रितता व एकाग्रता समझते हैं। एकाग्रता व केंद्रितता ध्यान के परिणाम है। शांत होकर बैठना, स्वयं में स्थित होकर अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करना, यही ध्यान है। इसके लिए किसी प्रयास की नहीं

0: अपितु प्रयासहीनता की आवश्यकता होती है। फिर आता है अंतिम अंग जो है समाधि। ध्यान में पूरी तरह डूबने पर, तल्लीन होने पर समाधि की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है।
1: आज की योगवाणी में हमने जाना महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। आज की योग शिक्षिका थी आशा जी कंवर। कल की योगवाणी की कड़ी में और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योगवाणी। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। आइए फिल्म संगीत में सुनते हैं कार्यक्रम भूली हुई यादें, प्रस्तुति दीपक मेहता की।

यादों के इस प्रोग्राम में आज सन 1966 की फिल्मों पर होगी बातें और उन फिल्मों पर थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए उन फिल्मों के गाने आप तक पहुंचाएंगे, जहन में करेंगे उन फिल्मों की यादें ताजा। ठीक है, तो उस साल बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी, फूल और पत्थर, सूरज, मेरा साया, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के, सावन की घटा, प्यार किए जा, 10 लाख, और भी बहुत सारी फिल्में। तो सबसे पहले जिस फिल्म पर बातें करें, ये धर्मेंद्र और मीना कुमारी की फिल्म है, फूल और पत्थर।

फूल और पत्थर एक रोमांटिक ड्रामा टाइप की फिल्म थी और एक सुपरहिट फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। ओपी अरलहन ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, फिल्म की कहानी एहसान रिजवी ने लिखी और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले भी ओपी अरलहन। इस फिल्म का गाना ये सुनिए और यादें ताज़ा कीजिए अपने जहन में इस फिल्म की।

इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रलहन। संगीत दिया रवि ने और गानों को लिखा शकील बदायूनी ने।

फूल और पत्थर फिल्म की बातें करने के बाद अब अगली फिल्म जो 1966 की है, ये फिल्म है सूरज। ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म, सुपर हिट फिल्म। इस फिल्म के गाने भी हिट हुए, फिल्म भी हिट हुई। इस फिल्म को बनाया टी गोविंद राजन और एस कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का निर्देशन जो है वो टी प्रकाश राव ने किया। फिल्म की कहानी जो है वो लिखी जवर सीतारमन ने। डायलॉग अबरार अलवी के रहे। कलाकार कौन ये बताएंगे जरूर, लेकिन इस गाने के बाद।

0: सूरज फिल्म के मुख्य कलाकार रहे राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, अजीत, मुमताज, जॉनी वॉकर, ललिता पवार, नीतू सिंह, डेविड, आगा, मुकरी जैसे कलाकार जिन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और फिल्म को सुपरहिट किया।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ।

ये प्रोग्राम है भूली हुई यादें और मैं हूं दीपक 102 मेरा चैनल आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। चलिए अगली फिल्म की ओर चलते हैं। मेरा साया 1966 की एक और खूबसूरत थ्रिलर टाइप की फिल्म।

फिल्म को बनाने वाले प्रेम जी राज खोसला का निर्देशन, फिल्म राजा परांजपे के एक उपन्यास पर आधारित है।

इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। राजा मेहदी अली खान ने इस फिल्म के गानों को अपनी खूबसूरत कलम से लिखा और संगीत देने वाले मदन मोहन।

तो ये आज का प्रोग्राम भूली हुई यादें, हालांकि बहुत सारी फिल्में भी बाकी है जिन पर बातें की जानी है, वो करेंगे अगले हफ्ते। तो भूली हुई यादें इस प्रोग्राम से अब दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूली हुई यादें, प्रस्तुति थी दीपक मेहता की। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
4: नमस्कार सखियों, स्वागत है आप सभी का आपकी पसंदीदा कार्यक्रम में जो है महिला जगत। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी। सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज के सबसे खूबसूरत हिस्से के बारे में, यानी आधुनिक नारी। जब हम आधुनिक नारी शब्द सुनते हैं तो सखियों दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर पर तेजी से चलती उंगलियां, कॉरपोरेट ऑफिस में मीटिंग्स लेती महिलाएं, या आसमान में उड़ता हुआ फाइटर जेट? बिल्कुल, आज की नारी आत्मनिर्भर है, पढ़ लिख रही है और चांद तक पहुंच रही है। सखियों, मर्यादा की चौखट भी है, उड़ने का आकाश भी है। आज की नारी के भीतर संयम भी है और विश्वास भी है। वो बदल रही है वक्त को, मगर अपनी संस्कृति को खोकर नहीं, उसके संस्कारों में आज भी अपनों का अनमोल एहसास भी है। सखियों, आज का जो बदलता दौर है, इसमें आधुनिक नारी शब्द केवल पश्चिमी सभ्यता को अपनाने या केवल कामकाजी होने तक सीमित नहीं है। आज की आधुनिक नारी अपनी जड़ों से भी जुड़ी हुई है, जहां उसके पास प्राचीन संस्कार भी हैं और नए जमाने की सोच भी। वो आधुनिकता का मुखौटा नहीं पहनती, वो प्रगति की नई कहानी लिखती है। ऑफिस की फाइलों में डूबी रहकर भी घर के रिश्तों की अहमियत समझती है। कोमलता उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। संस्कारों का धागा उसने कभी टूटने न दिया, अपनी जड़ों से जुड़कर ही उसने अंबर को छू लिया। सखियों, आज की नारी घर और बाहर दोनों जगह सम्मान, ईमानदारी और अपने के प्रति समर्पण के मूल्यों को बनाए रखती है। वह अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि उनमें मानवीय मूल्य और भारतीय संस्कृति के बीज भी बोती है। नारी स्वभाव से भी संवेदनशील होती है। आधुनिक नारी की संवेदना केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी समाज के प्रति जागरूक है। सखियों, चाहे दफ्तर में सहकर्मियों की मदद करना हो या किसी सामाजिक काम में हाथ बटाना, उसकी सहानुभूति और समझदारी हर जगह दिखाई देती है। सखियों, आज की नारी शक्तिशील और समझदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसके पंख भले ही आसमान छूने के लिए खुले हैं, लेकिन उसके पैर हमेशा संस्कारों की जमीन पर टिके हैं। वो अपनी संवेदनाओं से समाज को

सुंदर बनाती है और अपने संस्कारों से आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देती है। ऐसी आधुनिक नारी सचमुच समाज का गौरव है, परंपरा का मान भी है और आधुनिकता का सम्मान भी। नारी के इसी रूप में महक रहा इंसान भी। सलाम है उस आधुनिक नारी को आज, जो बनकर संवेदना की मूरत जीत रही है जहान भी।

सिख्यू 17 जून 2026 को यानी आज हिंदू पंचांग के अनुसार मेवाड़ की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो सखियों अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, लेकिन पारंपरिक रूप से उनकी जन्म जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 जून यानी आज है। सखियों उन्हें उनके अदम्य साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए हिंदू सूरज के रूप में याद किया जाता है। मुगलों के खिलाफ हल्दीघाटी के युद्ध में उनके योगदान और उनकी वीरता की कहानियां पूरे भारत में, विशेषकर राजस्थान में बड़े गर्व से सुनाई जाती है। इस अवसर पर राजस्थान समेत पूरे देश में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाइक रैलियां और राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए जाते हैं। सखियों हर साल 17 जून यानी आज के दिन विश्व मरुस्थल

मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बंजर होती जमीन और पानी की कमी के गंभीर खतरों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना और धरती की उपजाऊ क्षमता को बचाना। सख्यो, जब हरी भरी या उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर और रेगिस्तान जैसी बनने लगती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ऐसा पेड़ों की कटाई, ज्यादा रसायनों के इस्तेमाल और खराब खेती से होता है। और जब किसी इलाके में सामान्य से बहुत कम बारिश होती है जिससे फसलें सूख जाती है और पीने का पानी खत्म हो जाता है तो उसे सूखा पड़ना कहते हैं। सखियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हमने अपनी मिट्टी और पानी को नहीं बचाया तो हमें खाने पीने की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। स्वस्थ भूमि ही अच्छे भोजन और सुरक्षित भविष्य का आधार है। सखियों, इस दिवस का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन द्वारा किया जाता है, जो पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल

स्वस्थ भूमि ही अच्छी भोजन और सुरक्षित भविष्य का आधार है। सख्यो, इस दिवस का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन द्वारा किया जाता है, जो पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल के लिए इस दिवस का विषय है चारागाह, पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। सख्यो, मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकने के लिए जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और वनीकरण जैसे उपाय सबसे कारगर हैं। इन्हें अपनाकर भूमि की उर्वरता और जल स्तर को सुधारा जा सकता है।

0: 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सखियों, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान प्रतिमूर्ति जीजाबाई की, जिन्होंने अपने महान संस्कारों से छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण किया और देश में हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। सखियों, हर वर्ष 17 जून यानी आज के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे केवल एक राजा की माता नहीं थी, बल्कि मराठा साम्राज्य की पहली नैतिक मार्गदर्शक, कुशल रणनीतिकार और साक्षात वीरांगना थी। सखियों, राजमाता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी के मन में बचपन से ही देशभक्ति, साहस और अन्याय के खिलाफ लड़ने के संस्कार भरे थे। सखियों, एक कुशल प्रशासक और मार्गदर्शक होने के साथ साथ उनका हृदय अपनी प्रजा के लिए अत्यंत कोमल था। राजमाता जीजाबाई ने लोगों को अभयदान दिया। वे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पूरा जीवन धैर्य, संघर्ष और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। इतिहास में हमेशा एक ऐसी आदर्श माँ के रूप में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा, जिन्होंने एक साधारण बालक को छत्रपति शिवाजी जैसा महान सम्राट बना दिया। आज सखियों, उनकी पुण्यतिथि पर उनके दिखाए मार्ग और आदर्शों का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। जीजाबाई का जीवन हमें सिखाता है कि एक माँ की सही सीख और हौसला पूरे देश का इतिहास बदल सकता है। सखियों, अब हम बात कर रहे हैं भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया था। इतिहास में 17 जून यानी आज का दिन उनके अंतिम युद्ध और सर्वोच्च बलिदान के रूप में याद किया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की उन महान वीरांगनाओं में से एक है, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। उनका साहस और देश प्रेम आज भी हर भारतीय के दिलों में जोश भर देता है। सखियों, रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम था मनी कर्णिका और लोग उन्हें प्यार से बुलाते थे मनु। मनु बचपन से ही बहुत बहादुर और चंचल थी। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाएं सीख ली थी। सखियों, मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम बदल करके लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी कहलाई। कुछ समय बाद राजा का निधन हो गया, जिससे रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के नाम पर झांसी का शासन संभाला। सखियों, उस समय अंग्रेजों की ये नीति थी कि वे राजाओं के राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई सिंहनी की तरह गरज उठी और उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में रानी ने पुरुषों की पोशाक पहनी और अपनी पीठ पर अपने छोटे बेटे दामोदर को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ उनका अंतिम और सबसे भयंकर युद्ध हुआ। वे वीरता से लड़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाती रही। युद्ध के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुई। सखियों, रानी लक्ष्मीबाई मात्र 29 वर्ष की आयु में शहीद हो गई थी, लेकिन वे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी।

सखियो, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? वो सीढ़ी है हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य को केवल अच्छी आदतों से ही संजोया जा सकता है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बाज़ार से खरीद सकें, ये तो वो पौधा है जिसे हमें अपनी रोज़ की अच्छी आदतों के पानी से सींचना पड़ता है। सोचिए, सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना, कुछ देर खुली हवा में सांस लेना या सिर्फ मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करना, ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे शरीर को एक मजबूत किला बना देती है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन और शरीर बनता है। बाहर का पैकेट बंद खाना हमें कुछ पल का स्वाद तो दे सकता है, लेकिन घर की बनी दाल रोटी और हरी सब्जियां हमारे शरीर को असली ताकत देती है। और हाँ, सिर्फ शरीर ही क्यों, हमारी विचार भी हमारी आदत है। अच्छा सोचना, हर बात में सकारात्मक रहना और अपनों के साथ हंसना मुस्कुराना भी एक बेहतरीन आदत है जो हमारे दिल और दिमाग को जवान रखती है। तो सखियों, सेहतमंद रहने के लिए किसी चमत्कार का इंतज़ार मत करिए। आज और अभी से एक छोटी सी अच्छी सी आदत अपनाइए। समय पर सोइए, भरपूर पानी पीजिए और अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए। याद रखिए, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है और अच्छी आदतें इसकी चाबी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 11 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गज़ल, जिसे लिखा अमी खनफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे गजल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अजीज के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोजाना शाम 7:45 पर विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोजाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत गजल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: पलाश सेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया एल्बम से ये गीत, और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

बरसात की रात फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। माफ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। इस कव्वाली में साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत, वर्मा मलिक का की बोल और सोनी कुमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोजाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाएं तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले दिन का छाया गीत जो पुनः प्रसारित होता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फन से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजली ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में सुनिए उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कमलेश सोनावाला ने और इसे हमने लिया है हवा के झोंकों में एल्बम से।

अभी आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप फिर से सुन सकेंगे 12:05 से। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। FM बैंड 102.9 MHz पर दोपहर की 12:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आपने सुना आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज में। सनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ। लता मंगेशकर की आवाज जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुनी। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट

0: स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: झूठा सच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और मेन्यू कार्ड, गीतों का मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड नामक नाटिका आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। मूल कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेन्यू कार्ड हवा महल में। और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यार झुकता नहीं है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर की आवाज में ही ये गीत फिलहाल आपने सुना है, एसएच बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है।

0: राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जलडमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहाँ का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नेदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हां श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को

0: समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
6: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं
2: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
7: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप

0: छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
1: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
0: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े,
1: बिल्कुल
2: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
0: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
2: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
3: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
4: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
2: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
6: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
2: सारी छावनी में खलबली मच गई।
7: उसके बाद क्या हुआ दादी?
2: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
3: अरेस्ट करो,
6: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
8: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
7: दादी जी, फिर क्या हुआ?
2: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।

0: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
0: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
0: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
0: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
0: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ,
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी।

0: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा मां, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
2: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
3: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
2: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
3: ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ?
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
2: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
2: ये चाकू देख रही है ना?
0: छोड़ दो
1: मुझे, मत मारो, कुछ मत करो।
0: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
2: जल्दी,
0: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
3: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
2: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
3: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
1: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
1: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा पापा।
5: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
5: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
8: वाह वाह वाह,
7: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना, सबकी जान
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: अभी आप सुन रही थी NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM MHz पर। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
13: एक साथी कह रहे कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफर है तो मृत्यु क्या है। भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना, बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है।

वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के से साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला। देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती है, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूँ

जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने, उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती, नवविवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी

कोई गर्भवती भी है तो उससे भी इन्हें पूछना चाहिए कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूं कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो जरूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेजकर ही हमारे साथी दे देंगे, तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूं, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप जरूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले, और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी, उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी, जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से तो कहाँ जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी एक और साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत। और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मालिक और साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं मालिक साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी एक और साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहां कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

अभी आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे, उसके तुरंत पश्चात हिंदी में, जिन्हें हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। G7 लीडर्स अडॉप्ट डिक्लेरेशंस ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स टू काउंटर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मीट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट इन एवियन फ्रांस टू रीच पेरिस दिस इवनिंग एज पार्ट ऑफ हिज विजिट टू फ्रांस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इंडिया सॉवरेंटी नॉन निगोशियबल, साइट सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट एंड ऑपरेशन सिंदूर एज डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And now the news in detail. The G7 leaders have adopted a series of declarations focusing on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. In their statement, the leaders welcomed the deal between the United States and Iran under US President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and supported steps to strengthen regional security.

0: वहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण

0: की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। माई गॉव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में

0: मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर

0: गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट

0: खिल जाएगी सबके
1: बिल्कुल
0: चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ बहुत गर्मी है,
1: इसीलिए हमने ऐसा बोला।
0: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है।
1: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले थे, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
0: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर
0: और
1: सकते हैं,
0: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द, तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
0: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खास तौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है,
1: उत्साह।
0: तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
1: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती
0: हैं
1: ना,
0: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
1: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
0: पूरा मन उड़ेल देते हैं
1: जी,
0: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
0: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
1: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
0: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए उसकी
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियां फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि इसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की

0: 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस
1: हम्म,
0: दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं
0: बिल्कुल। और
1: किसी न
0: ममता
1: किसी
0: जी,
1: रूप
0: जो
1: में।
0: जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते पे गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं है, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते
0: जी
1: हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर, ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया, तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की
0: जी
1: दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता,
0: बिल्कुल
1: अचानक बारिश, अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं, और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती
0: ना
1: है,
0: के
1: जो एकदम
0: बराबर होती
1: जहां पर
0: बिल्कुल
1: लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है।
0: बिल्कुल
1: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो
0: बिल्कुल
1: आंगन
0: नहीं।
1: वाले घर हैं
0: हाँ ममता
1: वहां हम
0: जी,
1: कर सकते हैं।
0: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह, रख दी और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम बहुत
1: बचपन
0: आता
1: में तो
0: था।
1: खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया
0: हाँ
1: जाता था, छोटे छोटे
0: बिल्कुल
1: बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा
0: बिल्कुल
1: जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर
0: जी,
1: गया।
0: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे,
1: हाँ,
0: तो
1: तो
0: उसे इकट्ठा कर
1: ये
0: लेते
1: जो
0: थे।
1: खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना
0: जी
1: चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
0: बिल्कुल
1: हरियाली की और पानी की।
0: बिल्कुल। और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
1: अभी
0: जिम्मेदार
1: अभी
0: हैं।
1: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
0: जी जी
1: मंजरी
0: जी
1: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
0: जी
1: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर, एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन,
0: होता ही
1: तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था,
0: जी,
1: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात
0: बहुत
1: है,
0: अच्छी बात है
1: और
0: जी
1: अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने
0: जी
1: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप
1: बिल्कुल
0: क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता
0: हैं?
1: है, मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी

0: साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो हैं बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
1: मतलब
0: तो
1: काफी मेहनत लगती है
0: मेहनत
1: और समय
0: लगती
1: भी
0: है।
1: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और बांधनी की साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोमबी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोहानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है। हर तरीके की उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा, और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बना दी जाती है इन साड़ियों को।
1: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान
0: जी
1: है राजस्थानी बांधनी की।
0: बिल्कुल।
1: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
0: बिल्कुल
1: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ
0: बिल्कुल
1: फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
0: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है, और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियां बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
0: बिल्कुल, साज
1: और
0: श्रृंगार
1: वैसे
0: तो बहुत जरूरी है।
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये
0: बिल्कुल
1: बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं,
0: जी
1: तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां। फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।

0: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो, तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
3: बिल्कुल,
2: है ना,
3: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता।
2: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
3: बिल्कुल,
2: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। वे क्यों नहीं लिखती हैं?
3: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
2: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती हैं?
3: लिखना चाहिए,
2: लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर हैं, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
3: जी बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। बाकी सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखता।
2: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
3: है, बहुत ईमानदारी से,
2: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखें सच लिखें, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
3: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
2: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे

0: मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
1: उसका
0: तो
1: अपना ही मजा
0: जो
1: है
0: हौले हौले जज्बात
1: जी।
0: निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल, और हमारी
0: और
1: जी
0: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर के दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है,
1: जी
0: प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: लिखते
0: फिलहाल गाना
1: जी
0: सुनना चाहिए
1: जी जो

लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं। और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती।

0: हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है, और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं, तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो
0: बताइए,
1: कही नहीं जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर, राज को राज रहने दो,
1: राज को राज ही रहने देते हैं।
0: तो
1: लेकिन अब वो

0: देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
1: वो
0: बातें
1: अभी भी
0: लिखी
1: आती
0: जाती
1: है,
0: थी। हाँ अभी
1: बस
0: भी
1: शौक
0: आती
1: होना चाहिए डायरी खरीदने
0: शौक
1: का,
0: होना
1: डायरी
0: चाहिए,
1: लिखने
0: अब तो
1: का, और
0: खरीदनी
1: डायरी
0: पड़ेगी
1: डायरी तोहफे में देने का
0: जी। तो
1: भी एक अलग मजा है।
0: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है, कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला, रसोई, मैनेजमेंट, 6 लोग, कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और
0: क्या
1: ये जो
0: बात है।
1: लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं
0: बिल्कुल
1: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
0: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो
1: बिल्कुल
0: एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है। तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं। तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है
1: पढ़ाई की बातें और
0: जी।
1: गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो
0: जी
1: प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती,
0: जी
1: जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे
0: क्या बात है।
1: और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
0: क्या बहुत
1: तो
0: अच्छी अच्छी बात।
1: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
0: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है। ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन,
1: प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
1: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन, हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
1: जी
0: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों
1: दोनों
0: सकारात्मक
1: चीजें
0: नकारात्मक दो
1: जी
0: पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं, देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास

0: विश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज हर के साथ होती है।
2: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते
0: जी
2: हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने के, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
2: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें, तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि आप
0: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
2: जी।
0: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
2: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और विद
2: बिल्कुल
1: कॉमेंट्री पेश करते हैं।
2: हाँ।
1: तो ये जो उसमें आप कॉमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कॉमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहां इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स

0: गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, पेशवन हाँ। साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
1: बिल्कुल।
0: ऐ मेरे प्यारे वतन,

0: विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये,
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर
1: हाँ
0: बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
1: वो,
0: पूछता है।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस, मेरे ख्याल से, उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है,
0: जी जी
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है। और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से
0: रास्ते में है अभी तो
1: कम मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
0: पढ़ाई
1: नहीं
0: में थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: था। इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब तो अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
0: जी
1: वो खेत खलियान वहां बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
0: जी
1: वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका
0: गया
1: मिले
0: हूं।
1: आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या,
0: जी
1: मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद, कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है, वो
1: हाँ वो है
0: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है अलमस्त, जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसे कहा भी आता ना, इस सच को हम, उसका सामना करने वाला कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको, कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के, फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूं कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
1: हाँ, चूंकि बात
0: आपको।
1: अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया,
0: कौन सा
1: पल
0: है?
1: पल दिल के पास तुम रहते हो
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत है।
0: आइए सुन।

हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राजवी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूं कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको

0: पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूँ, ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और क्योंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरा यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने वाले, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। पर अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे ना रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते हैं ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए।
1: विजय भाई कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
2: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रेपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रेपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रेपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगें और जाएं कहाँ, सड़क पर तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
2: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र

0: किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी
0: जी
1: बातें समझ में ना आए। कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो, विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं। और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम। एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, बस बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा। फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस
0: क्या
1: नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें। तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम, मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया। तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो, तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मैंने मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे। 6 महीने के लिए बुलाया है, तो 6 18 18,000 में इतना इतना इतना, तो मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1 1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं। अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया, और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार, पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया, तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 चौक 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
0: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
1: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार, चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है, और टेस्ट गेहूं का ही आता है तो
0: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे जी।
2: अभी

0: किशोर दा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें ये गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी।
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूं, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूँ,
1: आपसे मिला नहीं, और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
0: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में।
1: बॉम्बे में
0: तो... अब मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
1: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है,

मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार, कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ या आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गई मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ।

0: मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने, तो काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं। नहीं मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कह नहीं रहे, तो थक गई थी काफी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ, वही करवाया उसी के उनके पास थी, और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये,
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं, मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कई कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बंबई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब, और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
0: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। और
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया, दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें 2 फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते
0: हैं? हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन 2 फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पर्सनल, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानेंगे कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी।

0: क्या है, कहानी कहने की कला जो है, खासतौर से सिनेमा की, वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी,
1: उसकी,
0: जी, जी।
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा इसको कौन निर्देशित कर रहे हैं? अच्छा।
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना, कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप, वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग सिनेमा, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी,
1: हाँ।
0: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है, सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाएं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
0: विजय भाई कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं, और रिलीज होने वाली 2-3 फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है, फितरत चूंकि मलंग है मेरी इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
0: शुभकामना देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने।
2: श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आइए, आज आपको सुनवाते हैं छांव बरगद की थीम पर आज का ये कार्यक्रम। आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी कोमल जोशी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम छांव बरगद की। बरगद का वृक्ष अपनी विशाल छाया, मजबूती और संरक्षण के लिए जाना जाता है। हमारे जीवन में पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कम बोलने वाले लेकिन हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने वाले। आज का यह कार्यक्रम उन सभी पिताओं को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए बरगद की छांव बनकर जीवन भर खड़े रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो पिता हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बड़े होने पर वही पिता हमें जीवन की राहों पर आगे बढ़ने का साहस देते हैं। उनकी डांट में चिंता होती है, उनकी खामोशी में प्रेम और उनके संघर्षों में हमारे भविष्य के सपने।

दोस्तों, इतनी तेज गर्मी के चलते ये तो स्पष्ट है कि हरियाली केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। इसी संदेश को लेकर हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, बढ़ती गर्मी, अनियंत्रित पेड़ों की कटाई, जल का अत्यधिक दोहन और भूमि का गलत उपयोग हमारी उपजाऊ धरती को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। इसका परिणाम मरुस्थलीकरण और सूखे की बढ़ती समस्या, विशेषकर प्रदेश यानी राजस्थान जैसे राज्यों में संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद, मिट्टी के हर कण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकेंगे। ज़रूरी है कि हम इसे एक रिमाइंडर की तरह लें, जल बचाएं, पेड़ लगाएं, धरती को माँ कहते हैं ना, तो उसे बचाने में अपना पूरा योगदान दें।

और समृद्ध भविष्य दे सकेंगे। जरूरी है कि हम इसे एक रिमाइंडर की तरह लें, जल बचाएं, पेड़ लगाएं। धरती को माँ कहते हैं ना, तो उसे बचाने में अपना पूरा योगदान दें।

जयवंताबाई के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अदम्य साहस, नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम था। जब अधिकांश राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तब महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि जीवन भले ही कठिन हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता और सम्मान कभी नहीं छूटेगा। वर्ष 1576 का प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध उनके अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक है। उनके प्रिय अश्व चेतक की स्वामी भक्ति और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है। संघर्ष के कठिन दिनों में महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटियां तक खाई, लेकिन कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः राजस्व स्वतंत्र कराया और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया कि स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम किसी भी साम्राज्य से बड़ा है।

दोस्तों, आज हम स्मरण कर रहे हैं मेवाड़ की भूमि के उस अमर वीर को जिन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मेवाड़ के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी आज ही के दिन राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्मे प्रताप, महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड वो

0: भी वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की समसामयिक खबरों की तरफ। भारत थाईलैंड रक्षा संवाद का 10वां संस्करण बैंकॉक में आयोजित हुआ, जहां दोनों देशों ने रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। वहीं रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंचा। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की तरफ बड़ा कदम है। वहीं पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जहां भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया गया। वहीं भारत सरकार का कोयला मंत्रालय 18 जून को मुंबई में सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर तीसरा रोड शो आयोजित करेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से संबंधित सरकारी पत्र को

पीआईबी फैक्ट चेक ने पूरी तरह फर्जी बताया है और नागरिकों से केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है।

दोस्तों, इस गीत के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूं आपकी रेडियो साथी गौरवी और ये था हम युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।

0: शाम के 6 बजे ही। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक वार्ता। विषय है जन जन के नायक महाराणा प्रताप। वार्ताकार है श्री शिव मृदुल।
1: यह सभी को ज्ञात है कि जन जन के प्रिय, प्रातस्मरणीय और देश प्रेम के प्रेरणापुंज महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया रविवार के दिन जयवंताबाई की कोख से कुंभलगढ़ में हुआ था। ठाकुर श्री राम सिंह सोलंकी के अनुसार महाराणा उदय सिंह जी ने जब बनवीर को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभा महल के प्रांगण में राज्यारोहण का उत्सव मनाया जा रहा था, सामंत और जागीरदार नजराना दे रहे थे। कुंभा महल के प्रांगण में एक पालकी आकर रुकी, उसमें से पन्ना दाय उतरी और लगभग 1.5-2 माह के कुंवर प्रताप को नजराने के रूप में गोद में सौंपते हुए उसने कहा, आज मेवाड़ के राजघराने की सेवा का मेरा संकल्प पूरा हुआ है। महाराणा उदय सिंह की जय, राजकुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप का बचपन चित्तौड़गढ़ में स्थित जालीबाव के महलों में बीता। पास पड़ोस के गांवों के जागीरदार इन महलों में आते रहते थे। वे प्रताप से बहुत स्नेह रखते थे। जब कुंवर प्रताप बड़े हुए, गुरुजी श्री राघवेंद्र जी के निर्देशन में प्रताप के लिए शस्त्र विद्या और रण कौशल की शिक्षा प्रारंभ हुई। उनके साथ उनके भाई सगर, जगमाल और शक्ति सिंह भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने अश्वारोहण, तलवार चलाना, ढाल से रक्षा करना, भाले का प्रयोग करना आदि तत्कालीन रणकौशल की सभी विधाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। अकबर अपने साम्राज्य विस्तार की कूटनीति द्वारा यह चाहता था कि बिना युद्ध किए मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। अतः उसने उसकी सुलह नीति के अंतर्गत बहराम खां को सुलह के लिए उदय सिंह जी के पास भिजवाया, किंतु उन्होंने कहा, सिसोदिया वंश कभी किसी विदेशी आक्रांता के सामने न झुका है न झुकेगा। इसके परिणाम स्वरूप अकबर की सेना ने 20 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी तथा 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तीसरा साका हुआ। इस साके, जौहर और नरसंहार की विभीषिका का समाचार सुनकर कुंवर प्रताप का दिल दहल उठा। उनके मन में अकबर के विरुद्ध भारी आक्रोश उभर आया। वस्तुतः प्रताप बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने अपने शौर्य तथा रणकौशल का परिचय 13 वर्ष की आयु में उदय सिंह तथा अफगानों के बीच हुए युद्ध में दिया था। कुंवर प्रताप वीर तथा साहसी होने के साथ साथ सरल सहृदय तथा सहयोगी स्वभाव वाले व्यक्ति थे। बाल्यकाल में ही उनका जनसाधारण से निकट का जुड़ाव हो गया था। उन्होंने अपनी सेवा भावना के कारण पूरे राज परिवार, सामंत समुदाय तथा जनता का स्नेह अर्जित कर लिया था। लोग उन्हें प्यार से कीका कहने लगे थे। हिंदी साहित्य में पातल शब्द भी उनके नाम के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सभी सामंत और जनसाधारण के लोग उनके हाथों में मेवाड़ के उज्जवल भविष्य के दर्शन कर रहे थे। महाराणा उदय सिंह के समय में मेवाड़ के कई किलों पर अकबर का अधिकार हो चुका था, किंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी छोटी रानी हीर देह के दबाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी, जबकि सभी सामंत प्रताप को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ पुत्र भी थे और योग्य भी। उदय सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात जगमाल का जब राज्यारोहण का कार्यक्रम चल रहा था, मेवाड़ के राजपूतों ने उसी समय जगमाल को सिंहासन से उठाकर प्रताप को सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार प्रताप के सिर पर कांटों भरा ताज आ गया। यहीं से प्रताप का संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसने कुंवर प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया। इसके बाद सभी सामंतों और जनता की सभी 3600 जातियों

लोगों ने मिलकर महाराणा प्रताप का विधिवत गोगुंदा में स्थित रामेश्वर महादेव की बावड़ी पर राजतिलक किया। मेवाड़ के महाराणा स्वयं को राजा न मानकर वे भगवान श्री एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अतः उस जन समुदाय के सामने महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, माँ भवानी और भगवान एकलिंग जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक मेवाड़ का चप्पा चप्पा स्वाधीन नहीं करा लूँगा, मैं राजमहल में नहीं रहूँगा। सोने चांदी के बर्तनों के बजाय पत्तल दोने में भोजन करूंगा और बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। सभी ने इसका ध्वनि मत से समर्थन किया। जय स्वदेश, जय मातृभूमि, जय मेवाड़ के समवेत स्वर से गगन गूंज उठा। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे। आकाश उनकी चादर और धरती उनका बिछौना था। हर समय उनके साथ कई सरदार रहते थे। महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करवाने में दानवीर भामाशाह और उनके भाई ताराचंद कावड़िया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियाँ लाकर महाराणा को भेंट की तथा मेवाड़ की सेना संगठित करने हेतु निवेदन किया। इससे महाराणा में अभूतपूर्व साहस का संचार हुआ और वे सेना तैयार करने में जुट गए। उनके सैन्य संगठन में 1 राणा, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वारोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल सैनिक और 100 अश्वपालक रहते थे। शस्त्र निर्माण के लिए गाड़िया लोहार उनकी सेना के साथ चलते और शस्त्र डालते थे। सत्तालोलुप राजघराने अकबर की अधीनता स्वीकार कर जब चैन की नींद सो रहे थे, केवल मेवाड़ राज्य महाराणा प्रताप के नेतृत्व में स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अकबर के सामने कभी सर नहीं झुकाया। अकबर ने प्रताप से सुलह करने के लिए मानसिंह को भिजवाया, किंतु उसे प्रताप ने जो खरी खरी सुनाई वह आग बबूला हो उठा और क्रुद्ध होकर चला गया। उसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ को 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का युद्ध झेलना पड़ा। हल्दीघाटी का यह युद्ध एक जनयुद्ध था। मेवाड़ की जनजातियों ने तथा आदिवासी भीलों ने पूंजा के नेतृत्व में इस सेना में भाग लिया। इसमें सामंतों के साथ 3600 जातियों के शूरवीर रण में डटे रहे। हकीम खां सूरी प्रताप की सेना का सेनापति था। बड़ी सादरी के मन्ना जाला ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर रामसिंह सोलंकी लिखते हैं, बील राज बामो मनो खान हजारा हाथ, बील राज बामो मनो खान हजारा हाथ, आजा दीहित जूझवण पातल रे सब साथ, आजा दीहित जूझवण पातल रे सब साथ। इस युद्ध में मेवाड़ के सूरवीरों द्वारा छापामार पद्धति का प्रयोग किया गया। अकबर की सेना टिक नहीं पाई, वह युद्ध को अनिर्णय की स्थिति में छोड़कर चली गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व की अद्वितीय भूमिका रही। मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप और उनके प्रिय अश्व चेतक का जन्म एक सुखद संयोग ही माना जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि लख 84 जून ले जीव जदे तपताप, पशु में चेतक जन्म ले मिनखा में प्रताप, पशु में चेतक जन्म ले मिनखा में प्रताप। हल्दीघाटी के युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका, अतः अकबर ने प्रताप से सुलह का प्रयास जारी रखा। उसने कई बार उसके विश्वासपात्र व्यक्तियों को प्रताप के पास भिजवाया, किंतु स्वाधीनता और स्वाभिमान के धनी प्रताप ने अकबर को एक विदेशी आक्रांता ही माना। अकबर के सभी दिग्गजों को निराश होकर लौटना पड़ा। गोगुंदा में राजतिलक के बाद 12 वर्ष अकबर और प्रताप के बीच संघर्ष चलता रहा, किंतु प्रताप के मजबूत सैन्य संगठन के कारण अकबर की सेना उन्हें परास्त नहीं कर सकी। प्रताप की राजनीतिक सूझबूझ ने मुगल सेना को चैन से नहीं रहने दिया। अकबर की सेना मेवाड़ में जिन मार्गों से होकर गुजरती थी, प्रताप ने उन पहाड़ों में बस्तियाँ बसा दी, उनके व्यापार मार्ग को रोक दिया। उस सेना के रास्ते में आने वाले खेत
खेत उजाड़ दिए, जिससे रसद के अभाव में मुगल सेना निष्प्राण हो गई। एक बार अकबर के सैन्य शिविर में से जब कुछ मुगल महिलाओं को लेकर आया तो महिला सम्मान के पक्षधर प्रताप ने उन्हें सह सम्मान

0: उनके खेमे में वापस भिजवाया। यह उनके उदात्त चरित्र का अनुपम उदाहरण है। प्रताप के राज्यारोहण और हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ में शांति और सुशासन की स्थापना हुई। उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का जो क्षेत्र अकबर के कब्जे में चला गया था, अपने मजबूत सैन्य संगठन के कारण धीरे धीरे वह क्षेत्र वापस प्रताप के कब्जे में आने लगा। उनका यह विजय अभियान दिवेर युद्ध में विजय के साथ प्रारंभ हुआ, जो 1585 ईस्वी तक 36 किलों पर अधिकार के रूप में पूरा हुआ। विशेष बात यह है कि युद्धकाल में घायल सैनिकों के शिविर में प्रताप स्वयं जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। यह उनकी सहृदयता का बेजोड़ उदाहरण है। वे केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार नहीं कर पाए। प्रताप ने युद्धकाल के बाद जनता को आर्थिक दृष्टि से राहत पहुंचाने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ करवाए। उन्होंने सुंगा पहाड़ी पर एक बावड़ी बनवाई और बगीचा लगवाया। कई स्थानों पर भवनों का निर्माण करवाया। कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ अनूठे प्रयास किए। चूंकि मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की जमीन ढालू होती है, अतः पहाड़ों में जहाँ भी थोड़ी सी समतल भूमि हो वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करने का सुझाव दिया। उन्होंने पहाड़ी नालों में बंधे बनवाए ताकि उन छोटे छोटे खेतों में सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। आज के संदर्भ में यह सुझाव नदियों में एनीकट बनाने का रूप ग्रहण कर चुका है, जिससे भूमिगत जल का स्तर ऊपर बना रहता है। आसाम में तो सीढ़ीनुमा खेतों में चाय की खेती हो रही है। इस प्रकार महाराणा प्रताप एक कुशल एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। वे विकट परिस्थितियों में भी अटल रहे और मेवाड़ की स्वाधीनता को उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा। उनके अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, रणकौशल, स्वाधीनता के प्रति प्रेम, सैन्य संगठन की सूझबूझ, धर्मनिष्ठा, उदात्त चरित्र जैसे गुणों ने उनके गौरव को सदैव ऊँचा उठाया है। उन्हें हिंदवा सूर्य की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इन सभी गुणों के कारण वे जन जन के प्रिय जननायक बनकर आज प्रातस्मरणीय हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आज देश प्रेम के पर्याय और प्रतीक बन गए हैं। उनकी जयंती आज पूरे देश में मनाई जाती है। प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने में उनके पूरे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिवार के सदस्यों ने प्रताप का मनोबल कभी कम नहीं होने दिया। विषम परिस्थितियों में भी प्रताप की पत्नी ने उन्हें जो संबल प्रदान किया वह प्रशंसनीय है। वास्तव में व्यावहारिक जीवन में पत्नी के संबल से ही समाज में पुरुष की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह कहा जा सकता है कि घर आंगन का चित्र है महिला, जीवन का सच्चा मित्र है महिला। घर आंगन का चित्र है महिला, जीवन का सच्चा मित्र है महिला। समाज में पुरुष की प्रतिष्ठा का महकता हुआ इत्र है महिला। समाज में पुरुष की प्रतिष्ठा का महकता हुआ इत्र है महिला। प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह शाश्वत सत्य है और इतिहास इसका साक्षी है कि सूरवीर सर दे देते हैं किंतु जमीन नहीं देते हैं, किंतु मेवाड़ के वीरों की और महाराणा प्रताप की अलग ही विशेषता है। यह कहा जा सकता है कि सर दे दे नह दे धरा ओ बड़पण अणमाप, सर दे दे नह दे धरा ओ बड़पण अणमाप, नह सर दे नह दे धरा सो बाजे प्रताप, नह सर दे नह दे धरा सो बाजे प्रताप।
1: श्रोता भी सुन रहे थे एक वार्ता, विषय था जन जन के नायक महाराणा प्रताप। वार्ताकार थे श्री शिव मृदुल। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है।
2: साफ हो गुलशन, महका हो गुलशन, चहका हो गुलशन, चलो गुलशन को गुलशन बनाएं। प्लास्टिक को कहें ना, थैले को कहें हाँ।
1: FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। श्रोताओं, शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज के

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की हमारी भाग संख्या थी 221। गायक स्वर थे राजेंद्र काचरू और चतुर सेन के। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है।
1: News on AIR app। जी हाँ, Google Play Store से News on AIR app डाउनलोड कीजिए और आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल के सभी कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। सवेरे 8:50 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से प्रसारित विभिन्न मनभावन कार्यक्रमों से अब आप देश विदेश की किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं News on AIR app के माध्यम से। यदि आपने अभी तक ये ऐप Google Play Store से अपने Android फोन में डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की सेवाओं का अनोखा अनुभव लें।
0: श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों में रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, साथ ही रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। और आज आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगली लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले T20 मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री भी। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। शाम के 6:27 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये सभी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। शाम के 6:27 हुए हैं और आपसे बस थोड़ी देर में पहले शाम 6:30 पर सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पीएमवीबीआरवाई के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का

0: समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसकी डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में 1 अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल निबोन केयर यूनिट्स, जो उनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड निबोन केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका

0: जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
1: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है, ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष्य में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहन राम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी।

कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में

0: रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गाँव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर दिनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम रात हर वन याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपया री रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लारला साल अगस्त महीना माए चलाई जी ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावनो है। PMVBRY हूं देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहली दफा शामिल भेवन वाला ने 15,000 रुपया ताई री रकम दो किश्ता माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवन वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताई री रकम मिले है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून न जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 उम्बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर में लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में लगाई जा शिविर में पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर में मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं मारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगों ने शिविर ताई पुगावन माए मदद करन री अरज की नी।

0: وکہوک جنتارا نمائندہ اہلکارا کرمچاریاں ہر جنتاری بھاگیداری ہوئی شیویر سارتھک بنائلا مکھی منتری کہوک راجہ سرکار آخری پانترا ہر ایک جناتائیں جنتارا بھلاری یوجناواں اور سرکاری سیواواں رو فائدو پوگا انہوں تیکینو ہے
1: मित्रों इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्र जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए चाहे वो नामांतरण का हो शुद्धिकरण का हो बंटवारे का हो पट्टों का हो उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली सड़क खरंजा सिवरेज खराब बिजली की व्यवस्था ये सारे विषय उसमें आते हैं हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले
0: पांचना बंधर पानी कमांड एरिया रे नहरा माए छोड़न री मांग करता था का किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है इ बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर पानी छोड़न रे बारा माए वन कागज सौंपियो वे मुख्यमंत्री बातचीत कर समस्या हल करण हर नहरा माए बेगोई पानी छोड़ बारी अरज की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है लोकसभा माए विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो राहुल गांधी रो भणाई लिखाई हूं जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षाओं माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करने रो कार्यक्रम है इन बीच राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कर वठे भर्ती जापा वाली लुगाइयां और वारा परिवार वाला सागे बातचीत कर वठे इलाज रा सुविधा ने बारा माए जानकारी लीनी बांसवाड़ाऊं गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी इन कारण छह जनारी मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंकिया जख्मी लोगों ने वडोदरा रा एसएसजी अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है हादसा रा कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है ओ दिन रेगिस्तान रा पसारा और सूखा रा असर रो सामो करण सारू जाग जगावन रा मकसद मनायो जावे है ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम में कहो कि सरकार 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन है उपजाऊ बनावनो तेकीनो है श्री यादव कहो कि मिट्टी में खारोपन बधन रे शंका वाला हलका में प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो दियो जावनो चाहिए वे विकास और पर्यावरण री हिफाजत बीच संतुलन बनावन री जरूरत मत है जोर दीनो
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर मत ही हासिल करियो जा सके है राज्य सरकार और डिजी लॉकर बीच व्या करार पाछे ओ सुबी तो मुहैया कराई चो है ये पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट मत है लॉग इन कर और जन आधार रो कागज डाउनलोड और सुरक्षित रखियो जा सके है इस आगे जन आधार जुड़ी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला ध्यान जोग है कि राज्य में परिवारां री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है प्रदेश में जन्मताई बच्चों रे मर जावन री रेट IMR लगातार कम फैल रही है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न्यू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर में एक अंक री कमी दर्ज करी ची है स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना

0: योजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावण और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा में बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
1: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा भेवन रे मौके आज प्रदेश माए के कार्यक्रम रखी चिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी चिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका मारा आदर्शा माथा चालन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि महाराणा प्रताप री जिंदगी अन्याय और अनैतिकताओं लड़बारी सीख देवे है। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके उदयपुर माए शोभा यात्रा निकाली जी और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा राखी जी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्यारी न्यारी धार्मिक पीठा रा साधु संत और मोटी तादाद माए लोग शामिल भया। ये मौके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक मोहन भागवत महाराणा प्रताप री लड़ाई ने देश री स्वतंत्र चेतना खुदरा मान और सांस्कृतिक अस्मिता री हिफाजत री निशानी बताई।
2: हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए फूल चढ़ावण और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी चिया। ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई जी और खास कार्यक्रम राखी चियो। पाली माए राखी जा कार्यक्रम माए पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत महाराणा प्रताप री मूर्त माथे सिरधारा फूल चढ़ाया वठे न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावारी ओरों जुलूस और रैली निकाली जी। अजमेर जिला रा किशनगढ़ माए स्कूटर मोटरसाइकिल चलावन वाला ने हेलमेट देर यातायात सुरक्षा रो संदेश दियो चियो। झुंझुनू माए आज नुआ अग्निवीरा रो मान करी चियो। ये मौके राखी जिया कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग कहो कि झुंझुनू जिलो हिम्मत और बहादुरी सारू न्यारी ओळखाण राखे है और वठाऊ फौज माए भर्ती वैर देश री सेवा करण री रीत रही है। वह कहो कि ऐड़ा जलसा नौजवाना ने आगे बढ़वारी सीख देवे है। अरब मौसम राज्य में कई ठोणा लाड़ला दिना भी बिरखाओं पारो उतरियो है। कठे कठे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस ताई कम भियो। चौमासाओं पहली री बिरखा रा असर अब आखा राज्य में लू रो असर खत्म वेक्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्री गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ टोंक बारां और करौली समेत 20 जिला माए ऑरेंज और अलवर भरतपुर अजमेर डीग और जयपुर समेत 16 जिला माए बादलां री गाज और बीजलियां री चमक सागे बरसात वेवण और जोरदार बायरो बाजण रो येलो अलर्ट जारी कर चेताई चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तेत करीब 2,400 करोड़ रुपए री प्रोत्साहन राशि देवण रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांत रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पुगावण रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावण बीच संतुलन बनावण माथे जोर दीनो। और महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य माए भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी

0: चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले टी20 मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री, जिसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। साथ ही हमारे ऑफिशियली ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन सकते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मानधना बाएं हाथ की। दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडॉन की तरफ, लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है, स्मृति मानधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, एक अतिरिक्त रन तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से। वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच, एक गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच टी20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से और एक रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगले का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बहने। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में एक रन और जुड़ गया, 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया। भारत का स्कोर हो गया 5 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्वेलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ, 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका और देखना है ज्वेलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: ज्वेलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था शैफाली वर्मा ने 4 रन के लिए। एक गेंद अब तक शैफाली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, कोई मौका नहीं लेना चाहती वैशाली शैफाली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
3: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वेल दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप, देयर आर द डिपेंडेंट नीदरलैंड्स एंड the last game they played against Bangladesh, it was a bit of a close encounter. Today is a very busy day. Three headers, India playing Netherlands, and you got

0: Bender winning his bowl. 2 overs, none for 25. And after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come after this. I think just looking at the clock, you know, 45 minutes ago, and they bowled just 9 overs, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, isn't it?
1: जी, जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है, निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज, और ओवर पिच गेंद थी उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल

0: से भारतीय टीम यहां पर खेल रही है, निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी, उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: यशवंत चाट जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं, अनुभवी स्कोरर, लेग साइड में ये पहला चौका लगा है ये बताया है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है। डी लेंज इस समय गेंदबाजी कर रही है, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फिर से 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं, गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है, कुछ नमी सी है हाथ में। और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे, और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं। इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है, भारत की रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पर पहुंची है। और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्डर के हाथ में, और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती, दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया, और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था, बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया कवर्स की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, अब जाके गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक 1 रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है। और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रनआउट करने के लिए, शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं, 32 गेंदों का सामना किया है, 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय। स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं, जो पहले आगे थी अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं, लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं, इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिडऑन की तरफ, 1 रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन, 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने। और शैफाली खेल रही हैं इस समय 48 के स्कोर पर, 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, ड्राइव किया इसने मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद, 1 रन ही मिलेगा, और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुँचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के।
2: So 96 from 10 overs. India really in firm control of this game in the first half, and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population, and Dutch is the language, which got a bit of a German mix into that, and they all these years, they're first class main footballer, keep saying about that, but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and test matches. Long way to go. And Manoj, our statistician, comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59-3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54-2 versus Bangladesh in Perth 20. And 51 for no loss against Bangladesh in Bengaluru 2016. Vander Raad bowls beautifully driven, beats a fielder at cover, diving save by Frederick. And I tell you, it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Now, was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to a 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form, and finally she found some form today. 50 from 34. And acknowledged by her batting partner, Smriti Mandana. It was driven up officially. I tell you, that was a catch. That will go in as a dropped effort. And it was in the air. And unfortunately, she couldn't grab it with both hands. Frederick was the fielder and she races her bat

0: एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया से कवर की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर उसने गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय भारत का स्कोर बढ़कर हो गया 115 रन। 11.3 ओवर का खेल इस समय पूरा हुआ है और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की इस तरह में बहुत ही मजबूत रह के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है, कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है। शेफाली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं। जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है। सैफ अली वर्मा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया। सीगर्स की गेंद पर 55 रन बनाए 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है। मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का वह मैच है, 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है। मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं। तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं भारत के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैफ अली वर्मा खेल रही थी लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी। सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया है उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 15 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज और बीसी गेंद को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमी माह रॉड्रिक्स से समय आई हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक अमेरिकन गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ज्वेलिंग ही खड़ी थी, ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर।
2: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Shefali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Shefali and they were very happy because they got the first breakthrough. But I'm sure when the Netherlands team hits back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we've got to have the bowling analysis, I keep saying, which I missed in the last few minutes. Zwelling, 3 overs for 22, Sages. 2 overs for 26 and she got a wicket too in the last over. Warning, 2 overs 25. Van der Rad, 2 overs for 16 and Delande, 2 overs, none for 16. 1 wicket taker so far and now change in bowling. We're going to see another leg spin bowler in action. She bowled 1 over before this and I was surprised that she was taken away. It is Silver Seizure. She can bowl around the wicket, over the wicket with a round arm action. Short, climbs onto the batswoman and it's pulled away down to its deep. Score like a juggle with the ball, in fact, by Wender Wunning, and finally she sends the return back to the wicket keeper. 1 for 122 from 12.1 overs, and India heading towards a massive score lead. I think she had a nasty bounce coming up because of the, there was a hole dug over there, maybe a yard or two in front of her, and it just bounced on her, and luckily it was a nasty one. So Jemima. She's coming now, ball, face the first ball. She gets a thick outside edge and trying to work the ball on the offside, daps it in front of backward square, no run. And India remain at 1 for 122. Mandana 47 from 34 and Jemima 6 from 3. And we've seen a large contingent of the Indian followers and a lot of followers from the Netherlands too.

0: Sieges the round of action, Compton Bowls, and it's worked away in the own side, and they probably will settle for a single, not more than that. I feel Sieges has been the best of these bowlers in this Dutch side, and it's very tough to read their action, isn't it? When I look at someone like the other spinner, which is Heath Sieges, she remembers me of Paul Adams from South Africa. She's got that kind of an action. So it's that, I'm sure with a lot of data and video available on the Indian team, the think tank team would have done a lot of work in studying their action and playing them. But some of the action's very tough to read as Malinga, isn't it? With that slinging action. And you see a lot of this coming up in the IPL game. Next ball, Sean. And she pulls it away on the onside down towards deep mid wicket. Just a single. Mandana up to 48 from 35. It's one for 124. I probably felt Richa Ghose should have been sent in now because she's another dominating, right-hander. And I would love to see her, she can score this one so quickly. She's a powerful lady indeed. And a very strong match winner for many, many matches for India. Next ball, short. Hammered away on the onside out towards deep mid-wicket. And it's one of those irritating pace for any batter to battle. Isn't it? They're just coming on to you very slowly, half-crackers, and you find it very tough to hit it or smash it to any part of the ground. That single pushes India up to 125. A run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at the centurion. There's been one centurion in this game. One for 120. Next ball, Smithy comes down, gets it high over extra cover. This is running down towards the fence. Will it go for four? And, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 15 indeed. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35-50. Manoj Kumar's statistician is bang on. 13 overs gone. One for 127.
1: स्मृति ईरानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो काफ़ी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ किसी भी पल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफ़ी होती है और इस तरह शैफाली ने अर्धशतक जमाया भारती के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर स्मृति खेल रही है 50 पर जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं दाएं हाथ की इनकी गेंद स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही हैं स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया इस 20 गेंद थोड़ी हवा में थी मिड ऑन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को स्मृति का स्कोर 50 रन अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है हवा में थी गेंद फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है दर्शक क्षमता काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और यहाँ पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा

0: 12 रन में उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया 132 रन एक विकेट के नुकसान पर। भारत का स्कोर 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी, और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको। स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद, और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है, विश्वनाथ।
1: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
0: ओवर डिस्क का ये आखिरी गेंद थी उनके, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को मारा है बाउंड्री डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: well, I think, you know, if they don't

0: isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased him in the last over, 19.1 overs. But D. Lead was wonderful to watch. 50 runs, he got half century of 45. The wicketkeeper, batter, 26 of years of age. Very promising player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland. The Dutch women were flying in and out of subcontinent to finish their exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her. She's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe. And she skipped it. And she's continuing on with their orange attire to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that. And I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool and for lesser known countries to endorse the game. And it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ, इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है, सर्वाधिक बार ऐसे छः बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छः बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है, जबकि इंग्लैंड ने 2009 में, जो कि इसका पहला संस्करण था, उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था, और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड, तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है। और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं, दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं, उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था, कलाइयों के सहारे से बहुत तेज़ी के साथ नहीं गई थी गेंद, एक रन और स्मृति मन ने ले लिया, 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर। भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74। तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है बबेट डी लीट, नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन, भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। एक कदम आगे बढ़ी थी और बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था। सीजर्स की अगली गेंद एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में है बहुत तेजी के साथ जा रही है और अब जाके बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: And the extra of inner fielder on the fence. I think it's a big mistake to have mid-off inside the circle because she's down the track, freeing her arms and gets her right foot away, and then she lifts it in the air with ease for fours and sixes.
1: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है आगे, एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है, 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं, रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना, बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं, उनकी गेंद ओवर पिच गेंद थी, गेंद को डीप विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 4 चौके इस ओवर में विश्वनाथ लगे हैं भारतीय टीम की तरफ से।
0: four boundaries in a row, and so very expensive. I think

0: के स्कोर पर विकेट के पीछे पकड़ी गई, कैच आउट, आउट हुए। दूसरा विकेट भारत का 162 रन के स्कोर पर, और जिस तरह से गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी, स्वीप करना चाह रही थी, गेंद उनके ग्लव्स के पास से लगी और विकेट कीपर जो कि कप्तान भी हैं बबेट डी लीड, उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहां पर। और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जेमी मर्रोड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे।
1: You look at the celebrations of the Dutch girls. Amazing, isn't it? They are celebrating each and every moment of this game. They're really enjoying this World Cup as a team together. And whenever they get a wicket, you know, irrespective of the score, I think the celebration has been wonderful to watch. And they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience is going to be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
0: बिल्कुल, इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए। इस बीच गेंद शॉट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा। यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद तीन विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया। इस बीच ये अगली गेंद थी राजकीर, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में और पीछे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर। तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया। दो रन दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए। 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है।
1: And, just and when the red she's come back strongly after her first over, went for 6 wides and I tell you she's found her rhythm so well.
0: जी, एक बार फिर से वेंडर रेड वापस गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: इट्स माय कर्स,
0: जैसे ही आपने तारीफ की उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। रिचा खेल रही हैं, रिचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं दो रन के स्कोर पर। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसके नीचे फील्डर कैच कर पाते हैं, यहीं ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफ़ी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था। उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया 3 रन और रिचा घोष खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर इस ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, the last over, it was not really a catch that was dropped. They also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at cover area. I tell you that.

0: को और खेला जाएगा। इस बीच डी राडिक गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया। हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन। ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे, ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था। इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह अगली गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं। ऋचा घोष ने बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी। एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं, 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल किया है उसे, देखना है फील्डर नीचे नहीं, लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया, 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राग की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई, लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया। हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का। भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच, टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राग की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे एक गेंद को टक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for 4, 1 bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, yeah, what I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for 4, one ball to go in the 19th over. And, well, India should get past 200, I think. That's what everyone was looking at. Right in the last of bowls, Fuller. That's beautifully bowled. It was a dot ball in the over. Fuller, Yorkerland ball. And Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball. 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're driving the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today, the second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs and well set for a 200. I think we're not seeing a 200 score in this World Cup so far. And well, we're not seeing much surprises from the Dutch women, but I tell you, they've taken this game at a different level and they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling bowls, gets an edge, it's going down towards deep. Third man, and run away for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: Not a great start to the last over. It was a thick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide offer for 4. So that's what India needed. 194, 5 legal deliveries remaining, and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes on 20 from 8, and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the lakshya, well taken by the keeper, beautifully done indeed. And a dot, and it's an extra delivery. Lots of wides in this game, and Zwilling, she's bowling the last over. No wicket for 27 from 3.1 overs.

पर 45 मिनट होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को

0: क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी

0: न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. An immense

0: से अधिक रनों से जी। इस बीच ये गेंद एक बार फिर से इसको गेंद को ड्राइव किया था मिडॉन की तरफ, बड़े मिडॉन से फील्ड करते हुए गेंद को ड्राइव किया था, थ्रो किया वापस, लेकिन तब तक एक रन और बनाया। 40 रन इस समय हो गया नीदरलैंड का स्कोर, 6.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हुई हैं श्री चरणी, बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं ये। गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ड्राइव किया है गेंद को, लेकिन सीधे 4 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: नीदरलैंड्स का स्कोर 44 रन के एक विकेट के नुकसान पर इस समय हो चुका है। श्री चरणी जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद डाली थी उन्होंने और बल्लेबाज के पास पूरा समय था कि वो गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट रीजन के बाहर भेज दें। 5 रन अब तक श्री चरणी दे चुकी हैं। इस बीच एक गेंद थी स्लॉट पर पड़ी, एक कदम आगे निकली, बल्लेबाज गेंद को ड्राइव किया था और वहाँ पर गेंद को फील्ड कर दिया, कोई मौका नहीं था। 166 रन की दरकार है अभी नीदरलैंड्स को 81 गेंदों का सामना करने करके। वो ये अगर स्कोर बना लेती हैं तो वो इस मैच में कुछ परिणाम और हो सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत दबाव में 6.3 ओवर में ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को धीरे से मिड विकेट की तरफ खेला और अब जाके दो फील्डर उसके पीछे भागते हैं। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास रॉड्रिक्स ने और एक रन और 45 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है नीदरलैंड्स का। श्री चरणी जो कि बाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक तरीके से बाएं हाथ का जो लेग ब्रेक गेंदबाज होता है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कहते हैं उसको, ये गेंद एक कदम आगे बढ़ के ड्राइव किया था लेकिन सीधे मिड ऑफ के हाथों में, कप्तान हरमनप्रीत वहाँ पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया। हालांकि छिटक की गेंद आगे गई और आगे आके धीरे धीरे कदमों से उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन बैटर को कोई मौका नहीं मिला कि वो इस पर कोई रन बना सके। 45 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय डी लीग खेल रही हैं 7 रन के स्कोर पर, मॉलकेन बोर खेल रही हैं 15 रन के स्कोर पर और अब जाके अपना छोर बदला है। ओवर राउंड द विकेट फिर एक बार आ रही हैं, एक बार गुडलैंग गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला और 7वें ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड्स का स्कोर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर।
2: Well, the asking great has gone beyond 12 and a half, so this game is slowly getting out of the reach of the Netherlands. And they need to find some kind of big hitting in the next 3 or 4 hours to bring that run rate to run about 10 an hour so that they can have a go in the remaining 10 hours. So you have all kinds of calculation. We're just looking at some of the IPL matches that got recently concluded. 200 was the benchmark. Now India have done this 200 benchmark now in the T20 World Cup. They are a lesser known opponent in Netherlands for sure, but I'm telling you somewhere in the coming years there will also be a lethal force to contend. Deepthi Sharma, she's going to bowl, the player of the series in the 50-50 World Cup. She's an amazing contender, I tell you. All of a sudden she bounces back. Round the wickets, the first ball comes and bowls and driven beautifully between cover and extra cover by D-Lead for 4.
1: Ye laga abha ka choka.
2: A classical cover drive coming down and playing it wide of the flyers on the offside between cover and extra cover. Glorious stroke indeed. Up to the pitch of the ball. Beautiful timing. So that's a second boundary from D Lead. She's a very busy player. She's gone quickly into double figures, 11 from 8. And now there's a bit of a discussion on. Play held up very briefly. It all settles down now. And Deepthi probably should fall down there because, yes, he does. Tossed up in the air, slow, and a batter comes down and pushes the ball up to mid on for an easy single, and that takes lead, D lead, up to 12. It was a classical drive indeed, the last ball that we're talking about, and how good the Dutch woman uses the feet. It's wonderful to watch when you do it against an off spinner, particularly against the spin. Oh, they've got your bowls, and now this is lifted in the air high, could be out, and now she's been taken by Roderick, so which means Malkinbur is out, caught at mid-off, and off the bowling of Deepthi Sharma, the partnership breaker again. So the Netherlands team lose the second wicket. Both the openers are now head back to the pavilion. Malkinbur caught by Jemima Roderick. She was down the track, but not to the pitch of the ball, and gets a

0: very thick outside edge and a simple catch to Rodrigues at mid-off. So which means wicket number two goes down and it's 2 for 50. And Mulcanburg, she's been there for a while. Decent scoring in 15 from 20 with the help of 2 fours. And India slowly, you know, getting the grip of this game now. They're 210. Is a massive score to win and chase in any T20 format, I tell you, at the international level. Right now they're on top of this game. And nothing has gone wrong for India in this, except for one bad thing that has happened. Was the ankle injury to the off spinner. She didn't play the last game against Pakistan, but now Patil, the off spin bowler, she just bowled only one ball, Shreyanka Patil, and then she's back to the pavilion. So Terry Callis, she's the new veteran. She's a wonderful middle order player. 66 innings, 1,953, got an excess strike rate of 104. First ball, she's back and defends up to shortest mid-wicket. The captain, Harmanpreet Kaur, the fielder. It's 2 for 50, we're in the 8th over. And the game slowly creeping away from the Dutch women. Deepti Sharma. Up she comes over, runs in a few paces and bowls short. And stumped stylishly off the back. A lovely stroke indeed. And this is going down towards the extra cover fence for 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Well, it was a quality stroke indeed. A beautiful shot off the back foot, and it looked very elegant, very graceful, and a nice shot indeed for Callis to get off the mark. She goes up to 4, and one ball remaining in the 8th over. 2 for 54 is the Netherlands scorecard, chasing 210. And now the sweeper goes on the fence on the offside. There's a deep cover now. Next ball. She played it. She came forward to play and then ended up playing from the crease. She was deceived in the flight. Beautifully bowled by Deepti Sharma. A successful over, 1 for 9 from that over. And at the end of that over, over number 8, Netherlands 2 for 54.
2: नीदरलैंड्स के स्कोर इस समय 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जो दो खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन लौटे हैं, हीथर सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकेन बोर, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन. दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं. बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था. इस बीच एक बार फिर से श्री चंडी के गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया. कोई मौका नहीं. आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है. उनको मैदान के बाहर ले जाया गया. राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं. समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 155 रन की आवश्यकता है. 71 गेंदों का सामना भी करना है. डी लीड इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर. कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर. ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया. अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर. श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफसाइड में एक दीवार सी खड़ी कर रखी है कप्तान. ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी. अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा. इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफन जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं. इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर. 2 लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए. इससे पहले भारतीय खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं. किसी भी तरह की अभी तक जो फील्डिंग में एक कसावट नज़र आती है नीदरलैंड की फील्डिंग के मुकाबले, वो अभी तक भारत के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है. 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर. डी लीडे समय खेल रही हैं, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया था सीधे कवर्स के बड़े खिलाड़ी के हाथ में. शेफाली वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया. रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया. श्री चरणी इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं श्री चरणी. जैसे बाएं

0: संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है। हालांकि भारतीय गेंदबाजी ने गेंदबाजों ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है इस समय। दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, सबको चकित कर दिया था। भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे। 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी। सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे। इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही हैं। क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर, उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है। और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रहे हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा, उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन, उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर थीर गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट द लीड कप्तान हैं और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में, अपना पहला मैच खेला था, वहाँ पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थी लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं, क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी, पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली, लेकिन 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, that was a good bouncer. It was a bouncer heading on straight towards her head, and she missed it completely. She had a look at the umpire, the square leg, and there was no signal from the square leg umpire, which means it was a genuine delivery. So, see, the bounce has been a bit effective in this World Cup, I've seen, because some of the tracks in England also have a bit of bounce. There's always something there for fast and swing bowlers. 133 more needed from 54 deliveries, which is 9 overs, and the game is just

0: It drifted away, I can tell you that. And then it held its line, and the batter played the wrong line completely, and the stumps are disturbed. So which means the third wicket is down for Netherlands, 77 for 3 in the 12th over. And Sturry Callis walks back 18 from 13 with the help of three boundaries. And probably these are the opportunities that I think batters should not lose, as a matter of fact. This is a beautiful platform to find some form and get ready for the rest of the other games. So qualifying for the semi-finals is very challenging though, because you're in a pretty strong group. And when you play teams like Australia or India or South Africa, as a matter of fact, it won't be that easy indeed. So Netherlands have lost their third wicket. Callis has gone bowled by Shefali Verma, a beautiful delivery which actually drifted away, and it held its line and got the batter playing the wrong line. 77 for 3, and it's Rich Key. She's the new batter in, and she's going to play Shefali Verma. She's a very tricky customer. Quicker one, flicked away on the onside, and she's off the mark. Rich Key of the first ball, and that brings the captain on strike. 20 from 19, and she's played beautifully in this game so far. Got a half century in the last game against Bangladesh. And Shefali all of a sudden has got the habit of breaking partnership indeed. And very effective and fast becoming a genuine all-rounder. Next ball. She's back again. Pulls it high over deep into wicket. One go for four has been patrolled by Renuka. And in comes a throw. Rather, she was the fielder. And restricts to just a single. It's 79 for three. Two more balls remaining in the 12th over, as Netherlands need 131 from 50 deliveries, and the game is just getting beyond the reach. Rich Key on strike. Takes guard from the umpire, and she goes for the reverse sweep. We've not seen reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area, and that's gone away for four. Ye laga, abha ka choka. A smart bit of cricket indeed. And there were a lot of scoops being played, the sweep being played, and the first time I'm seeing a river sweep and played to effect. And it fetches her four more runs, and she's up to five. And a welcome boundary here for the Netherlands. And well, cricket time is a very funny game. She's on five from two, 83 for three in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. Four inside the circle. Next ball. She's up and defending. Back to the ball. A very proper defensive push. Back to the ball. It brings the over to an end. 12 is gone. It's three down for 83.
1: 12 ओवर के समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम. लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं, मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है. मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की, तब तो कुछ कहा जा सकता है. लेकिन अगर आज की परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में. 6.92 की उनकी गति है, जबकि उनको चाहिए 15.88. इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में. बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया. एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन. इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सके हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा. इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई वो बाल बाल बची. वहाँ पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी, लेकिन गेंद उनके हाथ पर नहीं आई. डी लीड 21 रन पर सामना करेंगी, जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के. 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर्स के खेल पर और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए. 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम.

0: शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करना चाहती थी, हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर, उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा। 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने, और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। 112 ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाकर राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। 2 रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती थी, ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद, बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
1: No Indian bowlers have been tossed in this game, and a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan, and they won the game today. The second ODI by 170 runs, with centuries from the captain, and of course the wicketkeeper. They're all hammering hundreds, and it was a comprehensive win for India. 402 when they batted first. Shubman Gill scored 154. And Ishan Kishan scored 124, and they won comprehensively. 170 runs is the margin of victory. So, 6 bowlers have been used, and one is in this space, which is Sri Lanka. Otherwise, Kranti Grau has bowled a 4 overs for 26. Nandini back in action now. 2 overs, 1 for 16 balls. She goes for the scoop, does well, beats the short final leg fielder. This will race away now. It probably should be stopped a few yards inside the fence by Sri Charani. Couple of runs here. The scoop has come into effect in this game well from Netherlands' point of view. It's one area where there's a lot of risk involved, but as a matter of fact, it fetches you more runs and disturbs the rhythm of the bowlers. And that takes the lead. She's on 27 from 25, fast catching up with the half century scored last Sunday against Bangladesh. Next ball. She daps the ball in down towards long on, and they've all settled for a single. Lot more than that. Not sure why, Nandini's running after that, because she's well aware of the fact there is a fielder patrolling the long on boundary, and I probably can appreciate the commitment over there, but that's absolutely unnecessary. 3 for 95 in the 14th over. 115 more needed from 40 deliveries, which is beyond the reach of this Netherlands team. But I'm sure by the time these guys come and play in the next World Cup, you probably will see a reshaped young Netherlands team. Next ball is pushed back to the bowler, and a shy back at the bowler. I think it's hit her somewhere. And a bit of a friendly gesture and acknowledgement from both sides, both by the batter and the bowler. And it's a dot ball in the end, 3 for 95. Richke, she's on 7 from 6,

0: पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हीथ सीजर्स, स्कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट, स्टंप ऋचा घोष, बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस, जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय 4 विकेट, जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए, शैफाली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है। और पाटिल, जैसा कि इंजर्ड होके चली गई थी, गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं, और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है, अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं। और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे, भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी। लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट, मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही रिस्क की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
1: Well, at times I probably will say it's match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well indeed and takes Netherlands up to 99 for 5.
0: Zwilling ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है, जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। Zwilling ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चंडी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती, थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा हालांकि मिस फील्ड हुई।

सात गेंदों का सामना किया। कॉर्ट स्मृति बोल्ड श्री चन्नी 7 रन। इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह, तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहां पर, और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे ज़रूर आते हैं। 97 रन की अभी भी ज़रूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंदती है अंपायर की तरफ से, सर आरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चन्नी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और डीआरएस लिया है वहां पर। बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चन्नी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब डीआरएस के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं। लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट के पर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का, उंगली ऊपर उठी और राड जो कि 0 पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और 7वां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्री चन्नी लगातार 2 विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं और श्री चन्नी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था, लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्री चन्नी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था। अगली गेंद अच्छी, और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट, एक और विकेट गिर चुका है श्री चन्नी की। इस ओवर में देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने ज़रूर लिए हैं, लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता,
लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर, और बहुत ही सफल ओवर जिसमें

0: आपकी टिप्पणी के लिए. द सेम रूथलेसनेस इज वॉट आर लिसनर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम. साउथ अफ्रीका दो हैव सम इशूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बींग देन नंबर थ्री पोजिशन. विच बैटर इज बेस्ट फिट फॉर दैट पोजिशन?
1: It's difficult to say which batter, but the point is this, the match against South Africa will be an entirely different cup of tea. Ek to first of all, you know, if you don't forget, this is the same team that we played in the 50 over cricket, and if I'm not wrong, this is something that the scholar also mentioned. The intensity of that match will be an entirely different level, and they have so many match winners, starting from their captain. So it is not a question of number three or number four, it's a question of your mindset going into a big match, right? Today, if they can beat Pakistan or South Africa, Pakistan or Birmingham with the win, it will be a big boost ahead of this match. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah. So and don't think that they are a world-beating side. They're a very good side, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions. Right. Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay, so these kind of conditions actually help them prepare better. That's why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? It's because she knows that the next set of matches will be very, very crucial. And if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
2: Right, I think that's...
3: A lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
2: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
4: Haan ji, aadab, namaskar.
2: Namaskar.
4: Ji, main Mustaqim Uda bol raha hu Gujarat se.
2: Ji, bataiye, aapka sawal kya hai?
4: Ji, pehle to bahut match jeeta, bahut bahut shubhkamnaen hamari team ko, aur aise hi aage bhi jeet rahe. Bahut hi umda pradarshan team ka.
2: Shukriya sir.
4: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई, तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी?
2: राइट, श्रीयंका पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं.
4: रेडियो पे दे रहे हैं. हेलो सर
2: जी, बताइए.
4: हेलो, आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं. लोकल रेडियो स्टेशन था, रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं मीडियम में भी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं.
2: बहुत बहुत शुक्रिया. और नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसी लुत्फ उठाते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे. वैशाली, आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को?
5: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी है. जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो, तो हमारे पास उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही हैं. उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है. एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग की लाइनअप की, जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए, हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैच से दिख नहीं रहा है, नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वहाँ पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पर हरमन का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर जैमी.
0: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को. अभी कंडीशंस काफ़ी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफ़ी पीछे. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से बुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले. वो
3: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है. दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं. एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक

0: lot of difference because she's bowling quite well. She plays in the WPL. She knows all our batsmen, batswomen. So मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो batters हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से without losing more than one wicket, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
1: Absolutely. और वॉल्फार्ट शानदार फॉर्म में है. पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है.
2: क्वालिटी बैट्समैन है. देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में वाइट बॉल खेल रहे हैं या रेड बॉल. देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, तो दे हैव क्वालिटी. और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है, दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द. That's why we are talking कि नंबर थ्री में कौन बैट करना चाहिए, right? Mm-hmm. Because today Yastika did not get right. the runs as desired. But these kind of matches are very, very crucial. There, nobody will look at run rates. They will look at victory, 2 points, right?

0: superior quality hai, they can play in any format of the. That's why we are talking ki number 3 mein kon bat karna chahiye, right? Mm-hmm. Because today Yastika did not get right. the runs as desired, but these kind of matches are very very crucial. There nobody will not look at run rates, they will look at victory, 2 points, right? So it is very very important that you know you go with a proper mindset aur is tarah ka match hum jeetne ka koshish karenge, not about run rates.
1: It brings us to a very interesting point at this stage. On the 21st, Colonel, it's going to be the Indian bowlers versus South African batters. Or do you think the South African bowlers versus the Indian batters? What do you think will be the bigger battle on that day?
2: I think the bigger battle would be the South African bowlers versus the Indian batters. And I hope we do well. Okay. And score over 150 and put them under pressure with our spinners.
3: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप जो कि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
4: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफ़ी है, बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, आप फोर जहाँ पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे आप 2 runs दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज़ और ये कहूँगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियाँ भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो कहीं वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
1: इंडीड। और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सकें। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैतरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
4: जी बिल्कुल, ऋचा घोष मैंने हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है एंड उनकी बैटिंग ही नहीं उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नज़र भी आएंगी एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती हैं उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती हैं बॉलर्स को, वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहाँ पिच पे खड़े होके पूरी फील्ड सेट कर सकता है और सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे ईजी पॉइंट है वहाँ पे खड़े होके चेक करना।
1: All in all, a great win for the Indian side, and now they'll be putting their feet up and watching Pakistan take on the South African bowlers, especially so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st. Megha?
3: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. वैशाली यूज द वर्ड इशारा, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है इसी बात पे कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि 21 जून को हम वापस आएंगे। सुहास, आपका धन्यवाद, हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई, और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज, अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता, और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहाँ पर समापन करेंगे। वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ, जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
5: प्लेयर ऑफ द मैच।
6: अभी आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि की 10:54 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर कल की प्रसारण सभा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।